फिर कर बैसो हो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे, सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूरे अरसों कुरसान चटीए, तुद जिथे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीए, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदे साह, जिस पास बैठिया सोहिए, सब नांदा वेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया, दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी, नानक सो प्रभ जाप, पौड़ी जा प्रभ भय दयाल, नाम व्यापै माया, कोट अगा गए नास, हर एक त्याया, निर्मल भय शरीर, जन धूरी नाया, मन तन भय संतोख, पूरन प्रभ पाया, तरे कुटुंब संग लोग, कुल सबाया, मन तन भय संतोख, पूरन प्रभ पाया, तरे कुटुंब संग लोग, कुल सबाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच सुभायमान अभिलाखी जोड़ी अते समूह परिवार, सतगुरु साहब जी दे अस्थाना ते हुण आनंद कारज दी जो मर्यादा है वह आरंभ होण लगी है, जिस विच आप जी ने ध्यान देना है कि हुण सब तो पहलां लड़की दे पिता लड़के दा पल्ला लड़की नूं फड़ाउणगे, जिस विच नाल ही भाई साहब जी पल्ले दा शब्द पढ़नगे। बेनती है हुण लड़की दे पिता जी नूं कि उह लड़के दा पल्ला लड़की नूं फड़ाउण, उपरंत अगली रस्म अदा कीती जावेगी जी। हाँ जी।

नानक पाप नहीं लेपा। निर्तन को तन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा थाव, निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल घटा को देवो दान। कारण करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, अपनी गति में तो जान हो आपे, आपन संग आप रभ राते। तुमरी उस्त तुमते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम करया, साध संग दुर्मत मल हरिया। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जप हो जी सता, सगल बानी में अमृत बाने, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिह कट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण यार आनिया सो प्रभ सदा समाल, जन किया तिस चीत राख, नानक निभी नाल अष्टपदी। रमैया के गुण जेत पुराने, कवन मूल ते कवन दृष्टान, जिंतु सार सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जनै उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जो बन पूजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साग सैन, मुख अपया बैठ कौ दैन। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेह तो नानक सीजै, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवें शीतल जला, सुख दाय पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भोगें सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कारण नेत्र रसना, तसै त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मूड अंत व्यापे, नानक काट लिहो ब्र व्यापे। आद अंत जो राखन हार, ते सस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नवनिध पावै, तास्य मूढ़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जान दूरे, जाकी टहल पावे दरगा मान, तुसै बिसारे मुग्ध जान। सदा सदा ए पूलन गार, नानक राखन हारे पार, रत्न त्याग कौडी संग रचै, साज छोट चूट संग बचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर पुरानै, छूट जाय तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्त प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतित बिकरार, नानक काट दिहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मान सजात, लोक बचारा करै दिन रात, बाहर पेख अंतर मन माया, छप छिनाहि कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, यंत्र व्यापै लोभ सुमान, अंतर अग्न बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरै अथा। जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक तेजन सैर समात, सुन अंबा कैसे मार्ग पावै, कर गै लेह उड़ निभावै। कहाँ बुझाड़त बुझै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहाँ विष्ण पद गावै गुंग, जतन करै तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करै, नानक तुमरे कृपा तरै। संग सहाय सो आवन चीत, जो बैराई ता सुप्रीत, बलुआ केगर पीतर वसै, अनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन है प्रतीता, काला आवै मूड़े चीता, बैर विरोध काम क्रोध मोह, चोट विकार महा लोभ त्रो। याहो जुगत बिहाने के जन्म, नानक राख लेहो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पैर अदास, जियो पिण सब तेरी रास।

ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट समान जैसे राज रंको लागत तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञान के तीरथ एक ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सैड सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तारु ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उड़ते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल क्रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।

अमृत बरसे। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत भंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध जागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी का गोजय महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेदा, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अताखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण वर्ख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी नाद का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सकल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। और तार जो अंतर नाम सर्व में भिखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह परस सगल निस्तार अष्टपदे। मिथ्या नाही दसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पड़त्र रूप न पेख नेत्र, सादगी टैल संसंग हेत। कारण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप सुखा मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन दे टरे। इंद्री जित पंच तुग ते रैत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, वैष्णो सोच सो पर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हो पहन। कारम करत हो वै ने कर्म, तस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहो फल की इच्छा ने बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्रचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक हो वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगल भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। सा संग बापा मल खोवै, तिस भगवती की मत ओ

ज्यों तू चलाए त्यों चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जीव तू चलाए दिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावहे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है। तुद जिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहद साह। जिस पास बैठिया सोही है,

हमरे दुष्ट सुबह तुम काबहो, आप हाथ दे मोहि बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सुबह करतारा।

0: दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेला खेल खेला अनंत को फिर एक
0: दे पेव ना जाने जे भेद और कते
1: रूप नाम ना जात पास जानिए के जेव
0: कात मात ना जात जग जन मन विहीन
1: चक्कर बक्कर फिर चतुर चक मानिए पुरतीन
0: लोक जो देखे विखे जग जा पीजे जाप
1: आ देव नाद मूर्त थाप्यो सबे जे थाप
0: परम रूप नीत मूर्त पूरन पुरख पार
1: शर विचोर क्यो छंगर कण पंजन हार
0: कालहीन कला सुख काल पुरख देश
1: धर्म छाप तू परमृत पूत लाख पेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
1: गर्भ कन्या तुष्ट पंजन मुक्त दाय काम
0: आप रूप अमी कनुसत एक पुरख अवतूत
1: गर्भ कन्या सर पंजन आद रूप सूत
0: अंगहीन पंग नादम एक पुरख पा

0: स्वरूप
1: भंगी त्रिका में
0: बरगंग कृपा दया गंजे
1: सर्पागे सुसर्प अनुरागे
0: स्वरूप है चिजय अचूत है
1: नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
0: प्रभा है सदैव सदा
1: स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: सदा है विभुक्त प्रभा
1: अनुक्त स्वरूप।

0: मृंगाल का त्रास नरी है
1: जो सदा हमारे पक्षा शिय सुजु करियो रक्षा
0: करे साहिब संसाय प्यारे
1: दीन बंधु संके हंता तुमो पुरी चतुर्दश कंता
0: भाई ब्रह्म अवसर काल भाई शिव जीव अवसर
1: काल भाई कर विषण प्रकाश सकल

0: जहवेता कांस्यो वसंगरक्यता
1: सगरी शिष्य दिखाई चम्बवा जुगास्रयुस्यम
0: अवरक्षवरीतम करो सिकु वाय सिक्संगरो
1: दुष्चिते उटत पाता सकल मलेच करो ऋणगाता
0: शिष्य संले परे तिंके दुष्टुक तुमरे
1: पुरक्षवन पक परे त्यारे तिंके तुम संकट सप्तारे
0: ताके काल निगंदिया है
1: रच्छा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्टरे तत्काला
0: कृपा दुष्ट जाने हो ताके ताप नहीं हो
1: रेत सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट

0: साधी बुझियाता चलत होआ चलत नदरी आया।
1: कहे नानक सृष्टि मूल रचया जोत राखीता तू जग में आया।
0: मन चाओ बया प्रभ आगम आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर।

0: नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो।
1: ए श्री राम मेरे आए जग में आए क्या क्या तुद कर्म कमाया,
0: क्या कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया।
1: जिना तेरा रचन रचिया सो हर मन वसाया,
0: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया

0: संसार तुम देख दे ओ हर का रूप है हर रूप नदरी आया
1: प्रसादी बुझिया जावे कारिक है हर बिना ना कोई
0: कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दृप दृष्ट होए
1: स्वानियो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए
0: साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बानी
1: जिसनी मंतन हरिया हो रसना रस मानी
0: सच अलख वडाणी।

0: अहंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित सांतो बार गनी मन गार है
1: पशु नग नाग नरातव सर्व समय सब को बुद्धि पारे
0: भोगत है जल में थल।

0: प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्री सवारे
1: बार न पाए सके पद्मापत वेद कते व भेद उचारे
0: रोजी राज बिलोकत राज करो गुरहान की रोजी नटारे
1: तेज पतंग को रंग पुजंगम भूत भवेख भवान बनाए
0: देव देव खपे मेव ना पेव लखियो परम सिंह परम आए
1: वेद पुराण कतेव कुरान सेव तके कर हाथ नाए
0: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पस्यों किन श्री पद्मापद पाए
1: आद अनंत गाद द्वैक्सो भूत भवेख भवान।

0: देशवा ब्रह्म है शुभ कर्मन ते कबू ना टरू
1: ना डरो सब जज लाए जाओ निश्चय करे अपनी जीत करो
0: हूँ अपने ही मन को लालच हो गुनता उचरो
1: जब आपकी

0: का दरबार सगल भगत जाका नाम है आधार।
1: आपत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी।
0: जिसमृत डेरा टहे जिसमृत जम किछी ना कहे।
1: जिसमृत होत सूखे हरे जिसमृत डूबत पहा।

0: संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनि अरदास, संत प्रसाद मुको नाम निवास।
1: गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा,
0: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन, गुरुदेव बंद सहोदरा,
1: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरोधरा,
0: गुरुदेव सांसद बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा,
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान वजन परम्परा,
0: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पपित पत्करा,
1: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा,
0: गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कार, गुरुदेव संगत प्रभ मेल।

शकर चेहन अर बरन जात अर पातन हैन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण

माटी का क्या तुपै स्वामी, मानस की गत एही, हों अपराधी गुनहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर, पार कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह, अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकिरत घण, मैं को न रखंदा, सिमर मुरीदा ढाडिया, सतगुर बख्शंदा, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सिफत खसम दी, नूर अर सौ कुर सौ झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह,

असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेश माल भाख खाए, संख निंदक सिर कराए पार, नानक नी कै विचार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ताव, अगम अगम असंख लो असंख कह, सिर पार हुए। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जेने लिखे ते सिर नाहे, जे फरमाए तिव तिव पाए, जेता कीता ते ता ना हो, बिना मैं नाही को थाऊं।

खाई गाय केत्या दुख भूख साध मार ए पी दात तेरी दतार बंद खलासी पाने हुए हो राख न सकै कोई जे को खाए का कण पाए ओ जाने जेतिया मोए खाए आपे जाने आपे दे आखे से पी के ही के।